0: வணக்கம் நேயர்களே, ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம். இன்று சக ஆண்டு 1948, வைசாக மாதம் 15 நாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2057, சித்திரை திங்கள் 22 நாள், 2026 ஆண்டு மே மாதம் 5 தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. 100.1 FM கோல்டு அலைவரிசையில் எமது காலை நேர ஒலிபரப்பு ஆரம்பமாகின்றது. இந்த அலைவரிசையில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் சர்மா. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, वाम दलों को 1 सीट मिली है।

0: मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Keralam over victory in assembly elections. Addressing the party workers at the BJP headquarters in Delhi yesterday, Mr. Modi said the day heralds a new dawn for the nation.
1: Jai Parajay, Loktantra.

0: राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक घटबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 6-200 तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 8-100 आसनानि प्राप्तानि। भाजपादलस्य वरिष्ठनेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिमबंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलं राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतनप्रभातस्य सूचकः अस्ति तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20+ राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मलकुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6-0 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते इति वार्ताः।

0: दोस्तों लगातार आगे बढ़ती पल पल रंग बदलती जिंदगी की सुहानी सुबह को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक आपके लिए FM गोल्ड पर। मनोरंजन और जानकारियों भरे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों इस मुलाकात में आप सुनेंगे देश और दुनिया के कुछ समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, बात होगी मौसम के मिजाज की और इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का भी जिक्र होगा है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से। और फिर याद करेंगे हम कुछ ऐसी हस्तियों को है जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। आज आपके हम सफर हैं हम यानी मैं मुनीश शर्मा और मेरी सहयोगी नीना अरकल। नीना नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष। यस मनीष, मॉर्निंग इज इंडीड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर, अ फ्रेश पेज टू राइट एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लोर। एम्ब्रेस योर मॉर्निंग विद पर्पस एंड पॉजिटिविटी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज 5th ऑफ मे। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस मनीष।
0: जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जबकि पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है।
1: In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. On the other hand, the BJP, which had no representation in the assembly, has secured 3 seats this time. BJP State President Rajiv Chandrasekhar secured a stunning victory from Nemom in Thiruvananthapuram. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Karagam, TVK, has created history emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. TVK Chief C. Joseph Vijay won both Perambur and Tiruchi East seats. In the 234-member assembly, the ruling DMK secured 59 seats, while its main rival, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, won 47 seats. Chief Minister M.K. Stalin lost to TVK candidate V.S. Babu at Kolhapur in Chennai by a margin of around 8,700 votes. Our correspondent reports, TVK Chief Vijay will be the next Chief Minister of State soon. The party is falling short of 10 seats for the majority to form the government. More from our correspondent.
2: The protagonist of blockbusters like Talewa, Jananayagan, Marcel and Sarkar, actor-politician Joseph Vijay, who steered his party, the TVK, to victory, will be a real-life chief minister soon. Police officials were at his residence yesterday night to discuss the security and other protocol details. The police convoy meant for a chief minister is at his residence since yesterday night. After winning Perambur and Tiruchi East constituencies, he received the declaration from the Election Commission yesterday at Loyola College Counting Centre. As an alumni of Loyola College, the 51-year-old actor expressed happiness and looked cheerful as he received the recognition of being elected from Perambur. Vijay is likely to be elected by his party MLAs as a chief minister today. The party is tight-lipped about the formation of a coalition government. It remains to be seen what will be their next move. With Sushil Tiwari, Joy, reporting for Akashwani from Chennai.
0: Bharatiya Janata Party ke varish neta aur Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha hai ki ye avsar kai mayno mein aitihasik aur abhutpurv hai. नई दिल्ली में कल भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: पांच प्रदेशों की जनता ने

0: विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है।
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with his Jamaican counterpart Kamina Johnson-Smith along with other cabinet ministers of the country. In a social media post, Dr. Jaishankar said that during the meeting, they reviewed various facets of the partnership between India and Jamaica. They also deliberated on taking forward ties in education, health, agriculture, digital tourism, sports, entertainment, infrastructure, capacity building, and multilateral issues. Dr. Jaishankar also interacted with Jamaica's industry and business leaders. He emphasized that the imperative to deepen India-Jamaica business ties is that much stronger as countries across the globe diversify and seek reliable partners.
1: ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजैरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा है कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले की खबरों के बाद आई है। वॉशिंगटन के अनुसार अमरीकी सेना ने जल डमरू मध्य में 7 ईरानी नौकाओं पर हमला किया। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि जहाजों को नष्ट करने के अभियान में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी किया गया था। हालांकि ईरान ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल ये हमले अमरीका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम कहे जाने वाले अभियान का हिस्सा हैं।
2: In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets at Wankhede Stadium in Mumbai last night. Chasing the target of 229 set by Lucknow Super Giants, Mumbai overhauled the score 18.4 overs, losing 4 wickets. Earlier put into bat first, Lucknow Super Giants scored 228 runs for the loss of 5 wickets in stipulated 20 overs. Ryan Rickleton was declared player of the match. Today, Delhi Capitals and Chennai Super Kings will clash at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m.
1: और दोस्तों अब रुख करते हैं हम महानगरों की खबरों की ओर। पहले बात दिल्ली की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पश्चिमी दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से लगभग 3 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का पहले भी एक आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले आईपीएल मैच के चलते राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। इन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा और स्टेडियम के आसपास सिर्फ अधिकृत लेबल वाले वाहनों को पार्किंग मिलेगी जिसमें वाहन संख्या और चालक का मोबाइल नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
2: एंड मनीष फ्रॉम दिल्ली, लेट्स मूव टू न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई। तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशंस कमेटी ओपन्ड एप्लीकेशंस फॉर इंजीनियरिंग एडमिशंस काउंसलिंग। Class 12 students can apply for counselling till 2nd June. According to the admissions scheduled, the engineering rank list will be released on 29th June. Online engineering counselling is likely to be conducted in July. TNEA said that the counselling dates will be updated after getting approval from All India

0: Council for Technical Education. Candidates will be assigned a random number on 5th June. Certificate verification will be done from 8th to 20th June. State Board Class 12 exam results are scheduled to be released on 8th May, while the CBSE results are likely in the third week of May.
1: और रुख करते हैं मुंबई का। नव नियुक्त जापानी वाणिज्य दूताधिकारी सातो हितोमी ने सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। हितोमी ने कहा कि 2027 में भारत जापान राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने मेट्रो और हाई स्पीड रेल समेत बुनियादी ढांचे में सहयोग पर भी जोर दिया है और शिक्षा, कौशल और संस्कृति के क्षेत्र में संबंधों को विस्तार देने पर चर्चा की है। राज्यपाल ने शैक्षणिक सहयोग और भाषा विनिमय पहलों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि तीव्र तकनीकी प्रगति शासन व्यवस्था को बदल रही है। उन्होंने एआई और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन को कायम रखने की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बदलती दुनिया में डिजिटल शासन विषय पर आयोजित टेकवारी 2.0 कार्यक्रम में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि भविष्य की प्रणालियों में मनुष्य और मशीन का एकीकरण बढ़ जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि प्रौद्योगिकी जन केंद्रित बनी रहे।
0: Moving on to Bengaluru now, the Karnataka Chitrakala Parishad in Bengaluru will host the second edition of Namma Art Bengaluru from May 6th to 10th. The National Art Fair, envisioned as a platform for contemporary and traditional works, will transform this premier fine art campus into a hub for artists and enthusiasts. The chairperson and MD of Kirloskar Systems, Gitanjali Vikram Kirloskar, chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, K.G. Raghavan, art historian Ashrafi S. Bhagat and art collector Rahul Vaswani will inaugurate Namma Art Bengaluru program on May 6th evening. Over 150 artists from across India will exhibit their works in dedicated booths spread across the campus. A centerpiece of the fair is a specially curated exhibition by art historian Lena Vincent titled Mapping Periphery and Center, a Pan-India Dialogue. She has curated the works of over 70 senior master artists. The theme explores the complex relationships between geographical and cultural centers and peripheries through personal mapping, memory and landscape. News from Hyderabad. Telangana's Minister for Irrigation and Civil Supplies, N. Uttam Kumar Reddy, has ordered an urgent expansion of paddy procurement operations due to unseasonal rains threatening the harvest. So far, the state has procured 14.80 lakh metric tons of paddy from 1.84 lakh farmers. Over 2,001 crore rupees have been paid to farmers' accounts. All 8,575 paddy procurement centres are fully operational across the state. Heavy rains and strong winds have damaged paddy stocks in several districts, including Nalgonda, Mehboobnagar and Khammam. The minister directed officials to protect farmers' produce by immediately covering stocks with tarpaulins. Wet paddy will be shifted to parboiled rice mills to prevent total loss. The government has arranged intermediate storage capacity of 16 lakh metric tons as a backup.
1: दोस्तों, ये थी महानगर की खबरें और हम चाहते हैं कि जब आप बाहर कदम रखें, आप यात्रा कर रहे हो, तो मौसम के मिजाज की रहे आपको जानकारी। तो अब बात कर लेते हैं महानगरों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। यहाँ राजधानी दिल्ली में आज बारिश के साथ आंधी का पूर्वानुमान है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जबकि मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जा सकता है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश या गरज के साथ

0: honest and elegant. It's an example of how, at its best, labour offers us a chance to externalise what's good inside us. But this is increasingly rare in the modern world. Part of the problem is that modern work is incredibly specialised. Specialised jobs make the modern economy highly efficient, but they also mean that it's seldom possible for any one worker to derive a sense of the genuine contribution they might be making to the real needs of humanity.
1: और दोस्तों आज है जयंती प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक गायक और व्यवसायी गुलशन कुमार की जिनका पूरा नाम था दरअसल गुलशन कुमार धुआ टी सीरीज कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने काफ़ी कम समय में शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया और उन्होंने टी सीरीज कैसेट्स के जरिए देवी देवताओं के भजन और फिल्मों के संगीत को आम जनता के बीच बहुत ही किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया था इसके लिए उन्हें याद किया जाता है बहुत से उन्होंने भक्ति गीत जो हैं वो भी बनाए

0: might be making to the real needs of humanity.
1: और दोस्तों आज है जयंती प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक गायक और व्यवसायी गुलशन कुमार की जिनका पूरा नाम था दरअसल गुलशन कुमार धुआ टी सीरीज कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने काफी कम समय में शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया और उन्होंने टी सीरीज कैसेट्स के जरिए देवी देवताओं के भजन और फिल्मों के संगीत को आम जनता के बीच बहुत ही किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया था इसके लिए उन्हें याद किया जाता है बहुत से उन्होंने भक्ति गीत जो हैं वो भी बनाए और कई बार ऐसे गीतों में वो खुद भी काफ़ी नज़र आते थे तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही भक्ति रचना का ये छोटा सा अंश

0: और दोस्तों आज जयंती है बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार की। वो एक प्रतिभावान छात्रा थी। प्रीतिलता वादेदार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के दल की सदस्यता ली और फिर 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता वादेदार ने ही सूर्य सेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था।
1: Christopher Brown is an American singer, songwriter and actor. Born in Virginia, he was involved in his church choir and several local talent shows from a young age. Having signed with Jive Records in 2004, Brown released his self-titled debut studio album following year, with his first single Run It peaking atop the US Billboard Hot 100. Brown became the first male artist as a lead since Diddy in 1997 to have his debut single atop the chart. Here's the song With You from his second album, a song that still makes hearts sway.

नौशाद अली, हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार, पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने सिर्फ 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता दरअसल संख्या बल से कहीं आगे होती है। नौशाद के संगीत का ये जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन और संजोग जैसी कई फिल्मों को न केवल उनके संगीत ने हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। फिल्म बैजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फाल्के अवार्ड, लता अलंकरण तथा 1992 में पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। आइए सुनते हैं कुछ उनके ऐसे ही महान गीतों की एक छोटी सी झलक।

0: नौशाद साहब को आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। दोस्तों अब इजाजत दीजिए कार्यक्रम सवेरे यहीं समाप्त करने की। मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ है नीना हरकल। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं दोस्तों तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभ

0: इंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
3: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही

0: भगवान हैं और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर

0: और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Kerala. Hung Assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. 3 Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And now the news in detail. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, debutant Tamilaga Vetri Kadagam or TVK has emerged as the largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala.

0: இதில் 21-18, 21-9 என்ற எண்ணிக்கையில் வெற்றி பெற்று இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார். 2026-27 அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் படிப்பில் சேர மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க நேற்று தொடங்கியது. மாணவர்கள் www.tneaonline.org என்ற இணையதளத்தில் ஜூன் 2 விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேற்காசிய போர் காரணமாக விலைவாசி உயர்ந்த போதிலும் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்தியாவின் தயாரிப்பு துறை உற்பத்தியில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. நாளேடுகளில் இன்று கேட்டீர்கள்.
1: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நேயர்களின் நினைவிற்கு இன்று பிற்பகல் 1:10 இசைமலர் நிகழ்ச்சியில் சாய் கோவிந்த் விஜயராகவன் அவர்களின் மாண்டலின் இசை கேட்கலாம். பரூர் MK அனந்தலட்சுமி அவர்கள் வயலின், GK கணேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल गावित्री कजगम TVK ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर

0: हुए 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कहा है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने संघर्ष विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कल देश की ओर आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरिकेल। History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state, for the first time, debutant Tamilaga Vetri Karagam or TVK has emerged as largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than 2/3 majority in the assembly, ending the TMC 15-year rule. Out of the 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Karagam, TVK, has created history, emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 126-member assembly. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the NDA has regained power, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Prime Minister Narendra Modi has called the BJP's victory historic and unprecedented and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi last evening after poll results, the Prime Minister said that BJP NDA governments are in power in more than 20 states. He said BJP's mantra is citizen.

0: is God and party is dedicated to serving the people. He added that people are therefore placing more and more trust in the party.
1: Jai parajay loktantra aur chunavi rajneeti ka ek swabhavik hissa hota hai. लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है. लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है. सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, भारत का संविधान भी जीता है.
0: In Bihar, 12 people lost their lives in separate incidents of storm, rain and lightning yesterday. 5 deaths were reported from East Champaran district, 4 from Aurangabad and 3 from Gaya district. Chief Minister Samrat Chaudhary has expressed deep grief over the incidents. He has directed that an ex gratia amount of 4 lakh rupees each be provided to the next of kin of the deceased. Vietnam President Tho Lam is arriving at Gaya in Bihar today on a 3-day state visit to India. He is being accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government along with a strong business delegation. He will arrive in New Delhi later in the day. A large fire broke out at the Fujairah Oil Industry Zone yesterday after what authorities described as a drone attack originating from Iran. It is the first such strike to cause significant damage on UAE soil since a ceasefire took hold last month. Civil defense teams were deployed immediately to contain the blaze, with 3 Indian nationals reported to have sustained moderate injuries and been taken to hospital. 2 Indian journalists have won the prestigious Pulitzer Prize for an art reporting project exposing cybercrime in India. Anand R.K. and Suparna Sharma, along with Natalie Obiko-Pearson, were announced as the winners in the illustrated reporting and commentary category for the report they produced for Bloomberg. In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets in Mumbai last night. Today, Delhi Capitals and Chennai Super Kings will clash in Delhi at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Mukesh Kumar Bal. वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर. ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल. अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज के 22 चालक दल सदस्यों में से 15 को छोड़ा. मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 61 अन्य घायल. और ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोपों के चलते निष्कासित किया. रूस ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया. अब समाचार विस्तार से. वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं. उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा. वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे. कल वे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा. बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे. शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले महीने वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी ये भारत की पहली यात्रा है. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका के समकक्ष कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की. डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की. ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई. पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है. इस हमले में 3 भारतीय

0: नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबुधाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की खबरों के बाद आई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने जलडमरू मध्य में 7 ईरानी नौकाओं पर हमला किया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि जहाजों को नष्ट करने के अभियान में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम कहे जाने वाले अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य फंसे हुए जहाजों की सहायता करना और रणनीतिक जलमार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कराना है। सेंटकॉम के प्रमुख ब्रैड कपूर ने कहा कि 87 देशों के जहाज मौजूदा तनाव में निर्दोष दर्शक बनकर फंसे हुए हैं। इस बीच ईरान का कहना है कि जल डमरू मध्य बंद है और उसने अमेरिका के विध्वंसक जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: अमेरिका ने पिछले महीने रोके गए ईरान के मालवाहक जहाज के 22 चालक दल के सदस्यों में से 15 को छोड़ दिया है। अमरीकी सेना ने ईरानी ध्वज वाले जहाज तोस्का को 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में ईरान के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह चाबहार के तट पर नौसैनिक नाकाबंदी के तहत रोक दिया था। अर्धसरकारी समाचार एजेंसी तस्मीन ने भी छोड़े गए चालक दल के सदस्यों की ईरान पहुंचने की पुष्टि की है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा की बंगाल में जीत भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत और 61 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। ये विस्फोट कल शाम लियुयांग स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुआ। बचाव कार्य के लिए 5 टीमों में से 480 से अधिक बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 3 बचाव रोबोट भी शामिल हैं। विस्फोट स्थल बारूद के 2 गोदामों के पास स्थित होने के कारण बचाव दल ने आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बचाव प्रयासों के लिए विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजा है। 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोप के चलते ऑस्ट्रिया से निष्कासित कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट मेनेल रिसिंगर ने कहा कि पहले ही देश छोड़ चुके ये राजनयिक भवनों की छतों पर लगे कई सारे एंटीना का इस्तेमाल कर जानकारी जुटाने के लिए प्रयास कर रहे थे। रूसी दूतावास ने कहा कि ऑस्ट्रियाई अधिकारियों की यह नवीनतम कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित और रसासर अस्वीकार्य है। ये उन घटनाओं की श्रृंखला में

ताज़ा घटना है जिनमें व्यक्तियों पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रिया ने 14 रूसी दूतावास कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है। माली के सैन्य प्रमुख जनरल असीमी गोइता ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले इस पद पर रहे जनरल की हत्या कर दी गई थी। देश में जिहादियों और अलगाववादियों विद्रोहियों के हमलों के कारण सुरक्षा संकट बना हुआ है। अलगाववादी अजवाद लिबरेशन फ्रंट और अलकायदा से जुड़े JNIM ने पिछले महीने की 25 तारीख को माली के शहरों और कस्बों में हमले किए। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नाइजर और बुर्की फासो की सशस्त्र सेनाओं के साथ संयुक्त कार्रवाई कर जिहादियों और अलगाववादियों पर हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की पराजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 और 9 मई को यूक्रेन में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि कीव विजय दिवस समारोह में बाधा डालने का प्रयास करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कल आधी रात से युद्ध विराम का पालन करेगा और रूस की कार्रवाई का उसी तरह जवाब देगा। हालांकि युद्ध विराम की समाप्ति तिथि अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है। मैक्सिको आज फ्रांसीसी साम्राज्य पर अपनी अप्रत्याशित विजय की याद में सिंको डी मायो उत्सव मनाएगा। वर्ष 1862 में जनरल इग्नासियो जराजोआ गोजा के नेतृत्व में प्यूबला के युद्ध में एक छोटी और कमजोर हथियारों से लैस मैक्सिकन सेना ने नेपोलियन तृतीय की श्रेष्ठ फ्रांसीसी सेना को परास्त किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज के 22 चालक दल सदस्यों में से 15 को छोड़ा। मध्य चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 61 अन्य घायल। और ऑस्ट्रिया ने 3 रूसी राजनयिकों को जासूसी के आरोपों को चलते निष्कासित किया। रूस ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

なのよ。Yes, listen.

0: தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை, அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है. प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है. व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है. कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं.
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है. लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है. और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है.
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है. वाम दल को 1 सीट मिली है. मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं. बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं. एक रिपोर्ट.
3: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा. लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड पर आ चुकी है. चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा. उस सीट की गिनती 24 मई को होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है. संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता.
1: तमिलनाडु में अभिनेता

0: से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वित्रीकषगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली आएंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 77,103 पर और निफ्टी 67 अंक गिरकर 24,053 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, Debutant Tamila Vetri Vatkaragam or TVK has emerged as the largest party in Tamil Nadu. Meanwhile, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments and the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than 2/3 majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule. Out of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party, Tamilaga Vetri Kadagam, TVK, has created history emerging as the single largest party after winning 108 seats in the first election contested after its formation. In Assam, the ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term, surpassing the 64-seat majority mark in the 126-member assembly. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the NDA has regained power, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Prime Minister Narendra Modi has called the BJP's victory historic and unprecedented and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Kerala. Addressing party workers at the BJP headquarters in Delhi last evening after the poll results, the Prime Minister said that BJP NDA governments are in power in more than 20 states. He said BJP's mantra is citizen is God and party is dedicated to serving the people. He added that people are therefore placing more and more trust in the party.
2: Jai parajay loktantra aur chunavi rajneeti ka ek swabhavik hissa hota hai. लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, भारत का संविधान भी जीता है।
1: India has said the attack on the Fujairah Petroleum Industries zone in the UAE, which resulted in injuries to 3 Indian nationals, is unacceptable. 3 Indian nationals were injured after a fire broke out

0: कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: சபாஷ் மீனா திரைப்படத்திற்காக டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடியுள்ள பாடல்

0: श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़ककर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तोलाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तोलाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तोलाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह

पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री

0: के बाद नवनिर्वाचित टीवीके विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
4: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
5: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता

0: तय करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के दो पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाले चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
1: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजय घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का नौवा दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் இப்பொழுது 2:30 நிமிடம்.

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के

0: गुजरने में मदद करना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी है। तमिलनाडु में टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी नेता जोसेफ विजय ने द्रविड़ राजनीति के संस्थापक सीएन अन्नादुरई को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवनिर्वाचित टीवीके विधायक चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय को अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए एकत्रित हुए। पार्टी राज्यपाल से संपर्क कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहा है। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य देखभाल पर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा जापान में स्वास्थ्य देखभाल नीति प्रभार के मंत्री किमी उनोदा ने किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि ये बैठक सहयोग को और सुदृढ़ करने में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में नई भागीदारी को मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। ये मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Political activities have intensified for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Keralam after declaration of assembly poll results. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal assembly elections, preparations are in full swing for the formation of the new government and the oath-taking ceremony in the state. The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the ceremony. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetre Kadagam TVK has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as the leader in the legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. In Keralam, the Congress-led UDF is holding informal discussions on the formation of a government. The BJP has appointed senior party leader and union minister Amit Shah as a central observer for the election of the leader of the legislative party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi have been appointed as a central co-observer in the state. Union Minister JP Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the legislative party in Assam. Haryana Chief Minister Nayib Singh Saini has been appointed as a central co-observer in the state. These names were approved by the

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: has invited applications on deputation basis for one post each of accounts officer level 10 and private secretary to member secretary level 7. Eligible officers from central or state governments with prescribed experience in accounts, administration and computer knowledge may apply. The last date for receipt of applications is 11/5/2026. For details, kindly visit the website at www.nbaindia.org. I repeat, www.nbaindia.org. Office of the Director General Assam Rifles, Shillong, invites applications under the Compassionate Ground Appointment Scheme 2026 for eligible dependent family members of personnel killed in action, died in service, medically discharged or missing. The last date to apply is 11th May 2026. Recruitment rally is tentatively scheduled between July to August 2026 at Lokra, Assam, or with updates on www.assamrifles.gov.in. I repeat the website, that is at www.assamrifles.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए लीड कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन NHSRC। एक रिक्ति उपलब्ध है, आयु 55 वर्ष अथवा उससे कम होनी चाहिए, वेतन 1,30,000 रुपए प्रति माह से 1,70,000 रुपए प्रति माह के मध्य रहेगा। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के लिए देखिए नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर की वेबसाइट www.nhsrcindia.org तथा www.mohfw.gov.in। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किया जाना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 12 मई 2026। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर कंसल्टेंट सर्विलांस M&E एंड रिसर्च के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु सीमा 45 वर्ष है, जबकि वेतन 60,000 रुपए से 1,20,000 रुपए प्रतिमाह के बीच रहेगा। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखने के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.nhsrcindia.org। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किए जाने चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 12 मई 2026। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दो पद जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं तथा उप पुलिस अधीक्षक तीन पद ये भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। योग्यता और अन्य शर्तों के लिए देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की वेबसाइट www.nia.gov.in। उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान शिलांग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यहां निदेशक के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल 17 में आता है और ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mohfw.gov.in। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस रिक्ति के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर है। पटना उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट समूह सी के 48

0: रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र तथा टाइपिंग दक्षता। प्रमाण पत्र अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 मई 2026 और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 19 मई 2026। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in। नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विज्ञान नगर विशाखापत्तनम आमंत्रित कर रहा है इन विभागों के लिए आवेदन। मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कुल 10 पद। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन DCCP कुल 10 पद तथा डिजिटल फोटोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, डीजल और मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग 22 पद। कुल 42 पद उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की वेबसाइट अथवा मेल कर सकते हैं इस पते पर admin2.department.nstl@gov.in। विभाग की वेबसाइट है www.nats.education.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स, खेल के मैदान की गतिविधियों की भी देंगे जानकारी और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। कार्यक्रम में के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय।
4: हेलो विशाल। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय and with me of course is my co-host Vishal. Well listeners, he is known for his grounded approach, physical prowess and bringing a modern intensity to the character of Superman in the film Man of Steel, the 2018 movie. Yes, we are talking about Henry Cavill, who played Superman in the DC Extended Universe. Today we celebrate his birthday. We will talk about him in some detail later in our program. But first, we start with the news headlines first.
3: जी अभिषेक, मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैराह हमले की कड़ी निंदा की है। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान।
4: US एंड ईरान लॉन्च फ्रेश अटैक्स इन गल्फ एज टू साइड्स रेसल कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान।
4: पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिगिन फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन तमिलनाडु एंड केरलम आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ असेंबली पोल्स रिजल्ट्स।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर।
4: And in IPL cricket, Delhi Capitals to take on Chennai Super Kings in Delhi this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World

0: Yes, today marks an important global observance, World Hand Hygiene Day 2026.
1: जी, और इस साल की थीम है एक्शन सेव्स लाइव्स, हाथों की सफाई जैसा एक छोटा काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है और लोगों की जान बचा सकता है.
0: Absolutely, and this campaign led by the World Health Organization highlights how proper hand hygiene helps prevent infections, especially in healthcare settings.
1: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाथों की स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम को लोगों के ध्यान के केंद्र में रखने तथा सुधार के समर्थन में संस्थानों और समुदायों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 2009 में शुरू किया गया था.
0: And in 2026, as the campaign marks 18 years, its theme, Action Saves Lives, gives the observance renewed relevance. Awareness alone is no longer enough.
1: स्वच्छ हाथ, सफाई व्यवस्था, साफ सफाई का जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार और संक्रमण रोकने के मजबूत सिस्टम अस्पतालों और स्कूलों से लेकर घरों, काम करने की जगहों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की जगहों और सामुदायिक स्थलों तक हर जगह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने चाहिए.
0: एंड दैट्स वेयर द मैसेज बिकम्स अर्जेंट. डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स, विजिटर्स, एवरीवन प्लेज अ रोल. क्लीन हैंड्स आरंट जस्ट अ हैबिट, दे आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: जी, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने. और ये सिर्फ अस्पतालों की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खाने से पहले, शौचालय के बाद या खांसने छींकने के बाद हाथ धोने से कीटाणुओं को उसी समय खत्म किया जा सकता है.
0: एंड हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू लिसनर्स, डू यू वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स?
1: जी बिल्कुल, इसमें बहुत कम समय लगता है, उतना ही समय लगता है जितना हमें अपने पसंदीदा गाने का कोरस दो बार गुनगुनाने में लगता है.
0: नाइस टिप देयर विशाल. एंड डोंट फॉरगेट, यूज सोप एंड वाटर व्हेनेवर पॉसिबल, इफ नॉट एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर वर्क्स टू.
1: यह एक दिलचस्प बात यह भी है कि हाथों की सही सफाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने में भी मदद करती है.
0: राइट, दैट्स व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू मेडिसिंस. प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस इन द फर्स्ट प्लेस मींस फ्यूअर एंटीबायोटिक्स आर नीडेड.
1: भारत ने ऐसी पहलों के जरिए एक मजबूत नींव रखती है जो साफ सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ती हैं. स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने इसे खुले में शौच यानी कि ओपन डिफेकेशन से आगे बढ़ाकर एक व्यापक स्वच्छता एजेंडा की ओर बढ़ाया है, जिसमें कचरा मुक्त शहर, टिकाऊ स्वच्छता, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी शामिल है.
0: And for citizens, the action agenda begins with simple but consistent practices. Washing hands with soap at critical moments, before eating, after using the toilet, after coughing or sneezing, after handling waste and before caring for the sick remains one of the most effective everyday habits. Food hygiene, safe drinking water, clean household surfaces, responsible waste disposal and menstrual hygiene must also be understood as part of the same wellness framework. Hygiene is not a one-day campaign, it's a daily discipline.
1: अभिषेक, बहुत पते की बात आपने कही कि ये एक डिसिप्लिन, अनुशासन में शामिल होना चाहिए हाथों की सफाई. संस्थानों पर इस मामले में ज्यादा जिम्मेदारी और आ जाती है. स्कूलों को साफ शौचालय, हाथ धोने की सुविधाएं और साफ सफाई की शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. अस्पतालों को संक्रमण की रोकथाम को एक ऐसा मानक बनाना चाहिए जिस पर कोई भी समझौता न किया जा सके. कार्यस्थलों को साफ वॉशरूम उपलब्ध कराने चाहिए और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए. बाजारों में मिलने वाली खाने पीने के सामान तैयार करते समय साफ सफाई के जरूरी मानकों का पालन आवश्यक है. स्थानीय निकायों को सार्वजनिक साफ सफाई पर नागरिकों के भरोसे को बनाए रखना चाहूंगा. बदले में नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन एक जिम्मेदारी की भावना के साथ, और स्वच्छता से जुड़ी कमियों की जानकारी रचनात्मक तरीके से लोगों को दी जानी चाहिए.
0: सो इन कंक्लूजन, इट कैन बी सेफली सेड दैट क्लीन हैंड्स मे सीम सिंपल, but they remain one of the most powerful shields in healthcare. And as the world marks World Hand Hygiene

0: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि आज उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले चल रहे हैं हिमालय की वादियों में। अभिषेक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,00,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी, आइए सुनते हैं।
1: हिमाचल सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में शुरू की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को रासायनिक खाद के बजाय देसी गाय के गोबर, गोमूत्र तथा स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और खेती की लागत को कम करना है। प्रदेश में अब तक 2,22,000 से अधिक किसान व बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। ये पद्धति राज्य की 99% पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। कृषि व बागवानी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और करीब 94% लोग सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि व बागवानी पर निर्भर हैं। ये क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान देता है। राज्य में किसानों को बेहतर व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का और गेहूं के आटे का विपणन हिम ब्रांड के तहत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
2: The much-awaited direct regular Vande Bharat train service between Jammu and Kashmir commenced on May 2nd, 2 days after its formal flagging off by the Union Railways Minister Ashwini Vaishnav from Jammu Railway Station. And earlier, Railways Minister Ashwini Vaishnav, Union Minister Dr. Jitendra Singh, Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah flagged off the extended Srinagar-Katra Vande Bharat Express from Jammu Tawi Railway Station on April 30. The train, which earlier ran between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra, is now operating up to Jammu Tawi. We have more from a correspondent.
3: The Vande Bharat train service launched on June 6 last year after the inauguration of the Jammu-Srinagar rail line by the Prime Minister Narendra Modi has now been upgraded from 8 to 20 coaches. Earlier, around 500 passengers could travel. Now, nearly 1,400

0: হায়ার প্রফিটস ফর ফার্মার্স অ্যাক্রস দ্য রিজিয়ন। শাশ্বতী ভট্টাচার্য, আকাশবাণী শিলচর।
1: बात खेलों की दुनिया की। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया था और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने ज़रूरी जीत के लिए जो लक्ष्य था वो 18 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया और उसके अभी केवल 4 विकेट ही खोए गए थे।
2: Yes, and in some business news, benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The Sensex dropped 252 points to close at 77,018, while the Nifty dipped 87 points to settle at 24,033. And for more updates about market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और आइए अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
3: आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था।

0: जैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजा मंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई।
1: सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर जैल कर लिया था।

0: 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने।
1: 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे।
2: हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं।
0: 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
1: हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे।
0: नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
1: जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं।
0: हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे।
3: इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
0: मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930

0: को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था।
1: 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं।
0: हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया।
1: रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में काला पानी की कठोर सजा सुनाई गई।
0: 5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई।
2: और आज ही जयंती है बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार की। एक प्रतिभावान छात्रा थी प्रीतिलता वादेदार, ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की थी। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना से प्रभावित होकर इन्होंने क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के दल की सदस्यता ले ली थी। 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता वादेदार ने ही सूर्य सेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था।
3: Yes, and Adele was born on this day, 1988. She is an English singer, songwriter, and actress. Regarded as a British cultural icon, she is known for her mezzo-soprano vocals and sentimental songwriting. Her accolades include 16 Grammy Awards, 12 Brit Awards, an Academy Award, a Primetime Emmy Award, and a Golden Globe Award. In 2012, Adele released Skyfall, a soundtrack single for the James Bond film Skyfall, which won her the Academy Award for Best Original Song. Let's listen to it.

और आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार नौशाद अली की। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या से कहीं आगे होती है। और ये नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग जैसी फिल्मों उन्होंने दी और इनका जो संगीत दिया वो हिट भी हुआ और कालजयी भी बना। और इन्हीं की एक फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था, दर्द, और उसी का ये सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: Yes, and Henry Cavill was born on this day in 1983. He's a British actor. He gained wide recognition for portraying Superman in the DC Extended Universe, beginning with the film Man of Steel 2013, and reprising the role in Batman vs. Superman Dawn of Justice and Justice League, in addition to a cameo appearance in Black Adam and The Flash. Let's listen in to a dialogue from the movie Man of Steel.
1: You will help them accomplish wonders. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the Sun Cow. In time, you will help them accomplish wonders.
2: आज के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, गायक और टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का। टी सीरीज की स्थापना इन्होंने की थी, एक म्यूजिक कंपनी थी, और गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शामिल है जिन्होंने काफ़ी कम समय में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इन्होंने टी सीरीज कैसेट्स के माध्यम से देवी देवताओं के भजन और गीत जनता के बीच प्रस्तुत किए। गुलशन कुमार ने टी सीरीज के जरिए संगीत को लोगों के घर घर पहुँचाने का काम किया, और यही इनका सबसे बड़ा योगदान भी माना जाता है।

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை டாக்டர் ஆர் மகாலட்சுமி அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். மீரா சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வயலின், களக்காடு ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் மிருதங்கம். எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति के बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPN के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया

0: गया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் இப்பொழுது 6:05.

0: नेतृत्व निर्वाचनाय केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति। सहैव हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यस्य केन्द्रीय सह पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति। एतानि नामानि भाजपा संसदीय केन्द्रीय पर्यवेक्षक मंडलेन अनुमोदितानि सन्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वर्यस्य नेतृत्वे बिहार राज्यस्य मंत्रिमंडलस्य मई मासस्य सप्तमे दिनांके महत्वपूर्णः विस्तारः भविष्यति। भाजपेति दलस्य राज्याध्यक्षः संजय सरावगिः अवदत् यत् शपथ ग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः, जेडीयू दलस्य अध्यक्षः नीतीश कुमारः, एनडीए दल समूहस्य अन्ये वरिष्ठ नेतारोपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। श्री सरावगी अवदत् यत् गांधी मैदान इतीदं स्थानं समारोहस्य स्थल रूपेण चितमस्ति।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: कार्यक्रमस्य सज्जता पूर्वमेव प्रचलिता अस्ति। सहैव गांधी मैदान इत्यत्र सार्वजनिक प्रवेशः प्रतिबंधितः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना यूएई देशस्य पुजैराह क्षेत्रोपरि कृताक्रमणस्य दृढतया निन्दा कृता। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् नागरिकाणां मूल सौकर्याणि लक्ष्यीकृत्य कृताक्रमणात्मकं कार्यम् अस्वीकार्यमिति। सः दृढीकृतवान् यत् भारतं यूएई इत्यनेन सह दृढतया ऐक्यं स्थापयति। सहैव हि संवादस्य कूटनीतेश्च माध्यमेन सर्वासां समस्यानां शान्तियुत समाधानाय स्वसमर्थनं पुनरुद्घाटयति इति। श्रीमोदी अधोरेखितवान् यत् होर्मुज जलसन्ध्याः माध्यमेन सुरक्षितं निर्विघ्नं च नौचालनं क्षेत्रीय शान्त्यर्थं स्थिरतायै वैश्विक ऊर्जा सुरक्षायै च महत्वपूर्णमस्ति। ईरान देशस्य ड्रोन आक्रमणानन्तरं यूएई देशस्य पुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन इत्यत्र अग्निप्रकोपात् ह्यः त्रयः भारतीयाः नागरिकाः व्रणिताः अभवन्। पूर्वं विदेश मन्त्रालयः अपि यूएई इत्यत्र आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत् तत् अस्वीकार्यञ्च इति अवोचत्। मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये शत्रुतायाः तत्क्षणसमाप्तेः आवाहनम् अकरोत्। नागरिक संरचनायाः नाशेन सह निष्पाप नागरिकाणाञ्च लक्ष्यीकरणस्य निन्दाम् अकरोत्। अमेरिका ईरान देशौ गल्फ क्षेत्रे नूतनानि आक्रमणानि अकुरुताम्, येन होर्मुज जलसन्ध्याः नियन्त्रण विषये संकटः वर्धितः, फलतः संघर्षः जलसन्ध्याः परं प्रसृतोऽस्ति। भाजपेति दलस्य सांसदः राघव चड्ढा, अशोक मित्तलः, संदीप पाठकः, राजेन्द्र गुप्तः च अद्य राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मिलित्वा पंजाब राज्ये आप नेतृत्वे प्रशासनेन राज्यतन्त्रस्य कथितस्य दुरुपयोगस्य विषये चिन्तां प्रकटितवन्तः। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् राघव चड्ढा इत्यनेन आप नेतृत्वे पंजाब सर्वकारः राज्यतन्त्रस्य उपयोगेन राज्यसभायाः सदस्यान् लक्ष्यीकरोति इति आरोपितवान्।
2: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: अत्रांतरे पंजाब राज्यस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान इत्येषः अपि आपदलस्य राज्यसभायाः सप्तसदस्यानां भाजपेति दले प्रवेश विषये चर्चार्थं राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मिलितवान्। उपवेशनानन्तरं श्रीमानः आपदलस्य सांसदानां विलयनम् असंवैधानिकम् इति उक्तवान्। भारत ऋतु विभागेन आगामी दिनद्वयोः मध्यप्रदेशे विदर्भे छत्तीसगढ़े च मेघवृष्ट्या

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र का समस्त परिवार आपका अभिनंदन करता है। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की संजीदा चाल पर चर्चा करेंगे और अर्थव्यवस्था की भी विवेचना करेंगे। श्रोताओं, इस विषय वस्तु पर विवेचना करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, आपका मार्केट मंत्र में बहुत बहुत
0: वेलकम। सुषमा,
2: थैंक यू राजेश, थैंक यू प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: Benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 250 points, Nifty settles below 24,050. European stock markets display mixed trend and global crude oil prices fall.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, Sensex 250 से ज्यादा गिरा, वहीं Nifty 24,050 के नीचे बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में रहा मिश्रित रुझान और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे।

0: As a disclaimer, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, रुख करते हैं शेयर बाजार की हलचल की तरफ। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप 100 में लगभग 0.2% की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.3% का उछाल आया। इससे पहले बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और भू राजनीतिक तनाव के बीच पूरा कारोबारी सत्र दबाव में नजर आया। निफ्टी वायदा और विकल्प अनुबंध की साप्ताहिक समाप्ति ने बाजार में उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया। हालांकि दोनों सूचकांकों में दिन के दूसरे सत्र में अपने कुछ तेजी देखने को मिली।

0: Benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The Sensex dropped 252 points to close at 77,018, while the Nifty dipped 87 points to settle at 24,033. However, the broader market on the National Stock Exchange managed to close with gains. The mid-cap 100 rose nearly 0.2% and the small-cap 100 added almost 0.3%. Earlier, the market opened lower and continued to trade under pressure in the initial half amid geopolitical jitters. The weekly expiry of Nifty futures and options contracts further added to the volatility. However, both the indices managed to recoup some of the losses in the latter half.
1: Sensex में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में ICICI बैंक में 1.5% से अधिक, Eternal लगभग 1.4% और Tech Mahindra लगभग 1.3% गिरा। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम Mahindra & Mahindra 3.4%, Ultratech Cement 1.6% और Bajaj Finserv में 1.1% की बढ़त हुई।
0: In the sectoral indices of the BSE, 14 out of 25 sector edged downward. Among the top losers, Realty dropped 1.4%, top 10 banks lost 0.8%, and the consumer durables as well as services fell more than 0.6%. In the top gainers, FMCG gained 0.6%, auto climbed over 0.5%, and power added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,181 companies declined, 1,998 advanced and 176 remained unchanged.
1: और अब रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 98.47 पर चल रहा था। सुषमा, हमने दो सत्र देखे अभी इस हफ्ते, आज दूसरा है, तो आज हमने देखा कि जो सेकंड हाफ है, अगर हम कल के सेशन को देखें जी, तो उसमें बिकवाली हुई और आज हम देखते हैं तो लिवाली हुई। इसे आप कल को लेते हुए और आज की ट्रेजेक्ट्री को अगर मैं मिला करके आपसे पूछना चाहूँ, तो आप कैसे देखते हैं कि किस तरफ बाजार जो है अभी रुक किए बैठी है?
2: देखिए, कल की ट्रेजेक्ट्री काफ़ी फ़र्क थी, क्योंकि उसका ये डोमेस्टिक जो डेवलपमेंट्स हैं उसका असर पड़ा था मार्केट के ऊपर। खैर, जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आ गए थे और काफ़ी पेचीदा थे, काफ़ी हमें अजीब और गरीब कुछ रिजल्ट्स आए थे। खैर, ये जो तमिलनाडु में सबसे खासकर कि एक जो बहुत ही नई पार्टी आ गई है और उन्होंने स्वीप किया। अब वेस्ट बंगाल में तो खैर काफ़ी सर्वेज ने कहा ही था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी उसमें, उसमें इतना आश्चर्य नहीं था, लेकिन ज़्यादातर ये तमिलनाडु का ही था। लेकिन फिर भी ये जो मार्केट्स जो हैं वो ज़्यादातर खुश होती हैं जब स्टेटस को रह जाता है। तो स्टेटस को माने जो सेंटर में पार्टी है, वो ही अब स्टेट्स में भी धीरे धीरे आ रही है। तो उसका जो असर था सुबह की जो आपने बताया, उसके बाद बिकवाली के बाद, उसके बाद जब मार्केट सेटल हुई, तो मेरे ख्याल बाक जो ग्लोबल जो इवेंट्स हैं उनका असर पड़ा था ये मार्केट के ऊपर। और आज की जो जो जो वॉलिटिलिटी दिखाई दी सुबह के और शाम में, तो ये वॉलिटिलिटी एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से, और दूसरा जो जैसे आपने बताया ये जो निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी हो रही है, तो उसका भी असर है। लेकिन ज़्यादातर कल के बाद, मेरे ख्याल ज़्यादातर अब आज के बाद, अब अगर जो हम देखेंगे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का बहुत असर होगा और हमें तैयार होना चाहिए। अब हालांकि अभी भी हुआ है, पिछले महीने दो महीने से ये जो वॉलिटिलिटी चल रही है ये इन्हीं टेंशन्स की वजह से हो रही है।
1: कल की जो अनिश्चितता को लेकर के आपने बात की, जिसमें कि आपने चुनाव का जिक्र किया, कल एक और चीज देखने को मिली, एक और आंकड़े हमें देखने को मिले, वो थे FII के आंकड़े कि नाइन स्ट्रेट सेलिंग सेशन

0: crude oil prices, and aggressive FII selling dragged Indian equities lower, while FII selling was nearly 70,000 crore in a single month and pushing the Nifty down by 11%. How comparable is the present crisis to the 2022 Russian-Ukraine shock?
1: It is comparable to a small extent, but I would say that this crisis is far worse, because this is a crisis that involves many more countries. You know, the entire West Asian region. It involves the United States. It, you know, it involves all the countries of the West Asian region. And therefore, that crisis involved Russia. Of course, Russia is a very large country and very important, and Ukraine. But it didn't involve anybody else. And the prices shot up for about a month, and then they came down. That is crude oil prices I'm talking about. In this case, we have had this situation for over 2 months now, and prices have gone up, and we do not gone up beyond $100, and we do not know when they are going to come down. So I would say, and we do not know when the conflict is going to end. So this is a far larger and more difficult crisis than the one of Russia and Ukraine.
2: धीरे धीरे रे मना अभी देखने वाली बात है
1: जी, कि बिल्कुल
2: किस सूरत जो है किस तरीके की तब्दीलियां जो है वैश्विक स्तर पर होती है. लेकिन अगर मैं आपको आपका ध्यान आकृष्ट करूं घरेलू बाजार की तरफ, हमारे इंडियन मार्केट की तरफ, तो क्षेत्र विशेष की अगर हम बात करें सुषमा, उसमें आप अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनमें आप काफ़ी संभावनाएं देखती हैं?
1: देखिए, इस वक्त जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए. तो इस वक्त खैर अगर आप मार्केट देखें तो काफ़ी बेरिश ट्रेंड्स हैं बैंकिंग क्षेत्र और ऑटोमोटिव सेक्टर. लेकिन यही दो क्षेत्र हैं जिनकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. तीसरा एरिया है जिसके जहाँ मार्केट गिर रही है वो है आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर में अभी लोगों को का ध्यान इसके ऊपर नहीं आया है, लेकिन जो रुपी डिप्रिसिएशन है उसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ है. इन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये सर्वाइव करती हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के ऊपर. तो एक्सपोर्ट्स में जब अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उनको बहुत रेवेन्यूज़ उनके बहुत बढ़ जाते हैं. तो इस वक्त आईटी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई. हालांकि इस वक्त ये भी कहा जाता है कि एआई का ज़माना है, आईटी कंपनीज कैसी एडजस्ट करेंगी. तो ये इस वक्त अगेन थोड़ी बेरिश ट्रेंड्स हैं आईटी कंपनीज पर. लाइक मैं समझती हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत है.
2: सुषमा, क्योंकि आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तीन अगर मैं उंगलियों पर गिनना चाहूँ कि आपकी नज़र में, आपकी राय में, वो कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ आप सलाह देंगी आपके अनुभव के हिसाब से कि एक निवेशक को अभी अपना पैसा लगाना चाहिए?
1: देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स हैं
2: जी,
1: और दूसरा कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रही हैं, और तीसरा बड़ा मुश्किल है, तीसरा
2: क्योंकि इतनी अनिश्चितताओं से हम लोग
1: तीसरा तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हुए वो मेरे ख्याल बैंकिंग है.
0: Okay. Sushma, rupee we mentioned at 95 plus against the dollar creates a vicious cycle. It raises import costs, lifts inflation, triggers further FII selling, and weakens consumer and business confidence. What is, according to you, the RBI's realistic intervention capacity? And is there a risk of disorderly currency depreciation if the Hormuz situation deteriorates further?
1: The RBI, of course, is being very careful in interventions. They are allowing the currency to depreciate, but making sure that it does not, as you say, depreciate in a disorderly fashion. The impact, of course, the resources of the RBI are large, but obviously they would not like to draw upon those resources to a large extent simply to prop up the currency. One of the myths or the

0: सिक्योरिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 0.3% बढ़कर 149,843 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और मई अनुबंध वाली चांदी 0.9% बढ़कर 2,46,064 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। श्रोताओं, क्योंकि समय की बाध्यता है तो मुझे और राजेश को दीजिए इजाजत। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
1: थैंक यू सुषमा फॉर बीइंग विद अस।
2: थैंक यू राजेश।
1: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइंड, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,050। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स डिस्प्ले मिक्स्ड ट्रेंड एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। टिल टुमारो, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32,00,000 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी।

0: पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: திரைகானத்தை தொடர்ந்து கேட்கலாம். 8:10
1: இன்னைக்கு செம்ம வேலை. ஷோல்டர், நெக்கு, கையினு பார்ட்டு பார்ட்டா வலிக்குது. இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணியே 2020 பிரேக் எடுத்தியா?
2: அது என்ன 2020 பிரேக்?
1: 20 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை 20 செகண்ட் வந்து நம்ம பிரேக் எடுக்கணும். அந்த டைம்ல எழுந்திரிச்சு நிக்கிறது இல்ல லைட்டா கழுத்து கைய அசைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இதுதான் எல்லா டாக்டர்ஸும் அட்வைஸ் பண்றாங்க. சோ எவ்வளவு நேரம் வேணும்னாலும் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஆனா 2020 பிரேக் எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணுங்க. நம்ம ஆரோக்கியம் நம்ம கையில.
0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
3: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லி நிகம். केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास कांति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये मिशन सरकार के 5F विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
4: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइंस क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
4: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
3: कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों से गुजरात में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी ने सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमसिस्वयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। पार्टी नेता बिमल शंकर नंदी ने आकाशवाणी से कहा कि ममता बनर्जी गतिरोध पैदा

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
3: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में तीन

0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani.

0: 만탄.
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है और आज के इस नए अंक में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, विश्व में एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में

0: उभरता भारत, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परीक्षित निर्भय जी जुड़ चुके हैं। परीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
0: परीक्षित जी, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल या मेडिकल टूरिज्म है, इसके पूरी दुनिया में बढ़ने के ट्रेंड को देख सकते हैं कि पूरा जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का एक बाजार है, वो आंकड़ा कहता है कि 2022 में जो $115 अरब था, वो 2030 तक संभावना है कि $270 अरब तक पहुंच जाए। और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के तौर पर उभर रहा है लगातार। और एक आंकड़ा ये है कि 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म का पूरा अनुमान है वो लगभग $8 अरब के आसपास था, जो उम्मीद है कि 2030 तक $16 अरब से ज्यादा पहुंच सकता है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की तरक्की को और किस तरह से भारत एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है?
1: जो आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो बहुत स्पष्ट है, और जिस तरीके से हम अपना इतिहास देखेंगे और पिछला कुछ दौर देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, तो ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये आंकड़ा हम तय समय में हासिल कर पाएंगे।
0: जी,
1: चिकित्सा पर्यटन की बात है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं।
0: बिल्कुल।
1: दरअसल भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का जो इतिहास है, वो हम तीन भाग में देखते हैं। पहला भाग है साल जो 2000 है उससे पहले का, उसके बाद का जो इतिहास आता है वो 2000 से 2014 के बाद का आता है, और 2014 के बाद का एक अलग इतिहास रहा है हमारे देश का। चिकित्सा का इतिहास चूंकि हमारे सदियों पुराना है, आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, हम इसमें हमेशा से आगे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने ही सर्जरी के लिए कल्पना दी, सर्जरी का आचार्य सुश्रुत हमारे ही है। एक जब साल दर साल हम इसकी स्थिति देखते हैं तो 1960 से शुरू होता है, मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है, 2001-2002 के आसपास। तब तक चिकित्सा पर्यटन अपनी एक गति से चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा ऐसी गति नहीं थी, बस चल रहा था, लोग आते थे, बहुत लिमिटेड आते थे। मुझे याद है 1990 के बाद भारत में सबसे जल्दी से अस्पताल बनना शुरू हुए, उससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने इंडिया में नहीं थे। सबसे बड़ा दिल्ली में अपोलो बना था 99 के आसपास, उसके बाद ये चीजें बढ़ी। तो 2002 के आसपास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने मिलकर, और भारतीय उस समय ये था भारतीय उद्योग परिसंघ, इन लोगों ने मिलकर उस समय एक मुद्दा उठाना, पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट से अपील करना शुरू किया कि भाई चिकित्सा पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब किन्हीं कारणों के चलते सरकार ने उस पर संज्ञान तो लिया, पर वो जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं हुई। अब बात आती है 2014 की। धीरे धीरे जब वक्त 2014 का आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले क्या किया कि हेल्थ के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा, एक आयुष मंत्रालय शुरू किया। आयुष मंत्रालय शुरू करते करते इनका एक दो साल बाद ही इन्होंने चिकित्सा पर्यटन पे काम करना स्टार्ट किया। चिकित्सा पर्यटन पे काम इस कदर इनका शुरू हुआ कि आज आप देखिए कि भारत जो है वर्तमान में टॉप 10 शीर्ष जो देश हैं चिकित्सा पर्यटन के, उनमें से एक है। इसी तरीके से आंकड़े जो आपने बताए, इसमें कुछ आंकड़े मैं भी अगर जोड़ू आपसे बताऊं, तो दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस जो पर्यटन बाजारों में भारत 12वें स्थान पर है। एशिया प्रांत क्षेत्र में बात करें तो टॉप 10 शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से 5वें स्थान पर भारत है। भारत की आज स्थिति ये है कि तकरीबन 80 से ज्यादा देशों के मरीज हर साल आ रहे हैं और उपचार करा रहे हैं यहाँ पर। भारत के लगभग जितने भी शीर्ष प्राइवेट अस्पताल की जो चयन है, इन सबके लगभग सभी जगह पे इंटरनेशनल पेशेंट को लेकर रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंटेड है। हम दिल्ली में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां पर ये लोग कई तरीके की फैसिलिटी हैं, इंश्योरेंस से लेके और सारी चीजें हैं। सरकार भी कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे आपको पता हो हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले आयुष वीजा हुआ था, ई मेडिकल वीजा हो गया, जो इनका वीजा का प्रोसेस या बाकी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है पेशेंट की, वो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो है वो भी काफी आसान किया है भारत सरकार ने। साथ के साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें और उनका इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको स्वीकारता बने, उसके लिए भी सरकार ने गुणवत्ता और मानकीकरण पे काम किया।
0: बिल्कुल।
1: आज इसका जो परिणाम है वो ये कि अधिकांश हॉस्पिटल के पास में NABH यानी इसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, इनका प्रमाण पत्र हासिल है। ये प्रमाण ये बताता है कि ये अस्पताल ए ग्रेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था से लेके उपचार तक सबसे बेहतर ये व्यवस्था है।
0: परीक्षित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं मेडिकल टूरिज्म में, एक तो होता है डायग्नोस एडवांस सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और दूसरा है जैसा कि आपने बात की वेलनेस, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों में भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो जिसमें जटिल से जटिल इलाज लेने की ओर लोग भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ

0: जैसा कि आपने भी बताया, भारत लगातार आयुष को बढ़ावा दे रही है, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसमें कि होम्योपैथी, यूनानी पद्धति, अलग अलग पद्धतियां शामिल हैं। तो हर स्तर पर मेडिकल और वेलनेस पर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो कैसे आप देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो रहा है?
1: बिल्कुल हो रहा है। उसकी वजह ये भी है, देखिए स्वास्थ्य को या चिकित्सा को आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें चिकित्सा उपकरण भी आते हैं, इसमें इलाज भी आता है, इसमें जांच भी आती है, इसमें इलाज के भी कई सारी विधियां आती हैं। और बात यहाँ सिर्फ एलोपैथी या आयुर्वेदा की नहीं है। आप ये देखेंगे कि भारत सरकार ने होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, आयुष को मतलब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत अप्रोच के साथ में जो पहल की है। आज हम किसी भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ एलोपैथी नहीं, हमको आयुष का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हमको हर तरीके की पैथी है एक ही छत के नीचे, चूज हमें करना है कि हमको किस पैथी में जाके अपना उपचार करना है। ये अप्रोच बहुत ही अच्छी अप्रोच है और मुझे नहीं लगता, मैं इतनी कंट्री में मैंने देखा है कि इस तरीके की अप्रोच दूसरे देशों में है। दूसरी बात, सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाई थी चिकित्सा पर्यटन को लेकर, मुझे बहुत वो पसंद आई। उसका था हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, मतलब भारत से मरहम लीजिए और भारत में मरहम लीजिए, दोनों बातें। तो चिकित्सा पर्यटन के नाते आप भारत में आइए, यहाँ उपचार कराइए, अच्छा गुणवत्ता वाला उपचार लीजिए। और भारत से मरहम का मतलब भारत के जो स्टाफ है, भारत का जो डॉक्टर है, भारत के जो नर्से हैं, उनके देशों में अपॉइंट करने के लिए, तैनात करने के लिए उन देशों से वो करा। तो ये योजना जो है कि मतलब सिर्फ हम अपने घर में ही नहीं दे रहे हैं, हम आपके घर में आके भी आपको इलाज देने की व्यवस्था कर रहे हैं।
0: निश्चित तौर पर, और भारत में जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका एक और अहम कारण ये माना जाता है कि भारत में चिकित्सा को लेकर एक बहुत पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने भी अस्पतालों, डॉक्टरों का जिक्र किया, तो आंकड़ा कहता है कि भारत में लगभग 70,000 के आसपास अच्छे अस्पताल हैं, जिसमें कि लगभग 43,000 के आसपास निजी अस्पताल और 25,000 से 26,000 के आसपास सरकारी अच्छे अस्पताल हैं। और डॉक्टरों की संख्या भी 12,00,000 से ऊपर है, जो प्रशिक्षित और सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा भारत में जो चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, उसका भी एक बहुत भरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कैसे भारत का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इकोसिस्टम है, वो भारत को एक दुनिया में बड़े मेडिकल हब के रूप में बनाता है, और आगे आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना है, जैसा कि सरकार भी मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है। तो कैसे आने वाले समय में इस इकोसिस्टम के और मजबूत होने से जो भारत का एक मेडिकल हब बनना है, मेडिकल टूरिज्म बनने की दिशा में एक कदम है, वो और आगे बढ़ेगा?
1: जी जी, देखिए अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आजाद भारत का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमें आज आजाद हुए 70-75 साल हुए हैं और हमने जो अप्रोच ली है ये पिछले 10-12 साल की अप्रोच है। और इस 10-12 साल की अप्रोच में हम देखिए कहाँ आके खड़े हो गए, टॉप 10 शीर्ष 10 देशों में हम शामिल हो गए। इसी अप्रोच के साथ अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो ये पूरा भरोसा है कि हम पहले या दूसरे स्थान पर होंगे। उसकी वजह, हमारे पास में क्वालिटी है, हमारे पास में क्वांटिटी है यानी संख्या है डॉक्टरों की, हमारे पास में इंस्टीट्यूट है। देश में जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 750 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी, जो कि ये शायद दूसरा या तीसरा स्थान आता है पूरे दुनिया में भारत का, जो हम डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। सबसे ज्यादा MBBS सीटें हमारे पास में हैं और आयुष और इसको लेके भी हमारे पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो कहने का मतलब हम स्टाफ में भी ध्यान दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू वो पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं जिससे बाहर के मरीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको सहूलियत हो। जैसे कई देशों में अभी देखते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, है ना। ईरान और इराक और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री ऐसी हैं यहाँ के लिए हमने हमेशा ही अपना दरवाजा खोल के रखा है। और जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें 2014 के बाद से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जो मेजर सर्जरी हुई है, जो मतलब करिश्माई सर्जरी बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा इराक और ईरान और अफगानिस्तान के लोगों की हुई है। किसी मैंने देखा था, ये दिल्ली में महसूस भी किया है कि कोई वहां पर जब जंग हुई, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, जब वो लोग आए और उनको हमने वो सब चीजें दी है, नए ऑर्गन डेवलप करके उनको दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ है। और वैसी सर्जरियां शायद कभी हुई भी नहीं थी वर्ल्ड में, तो हमारे पास वो क्षमताएं हैं।
0: और अभी अगर हम इस बार के बजट की ही बात करें परीक्षित जी, तो भारत सरकार ने भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से या भारत में जो चिकित्सा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसमें सबसे बड़ी घोषणा तो ये थी कि भारत में 5 बड़े रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जिसमें कि रिहैबिलिटेशन से लेकर रिसर्च और इलाज तक की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे ही बड़े अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र की भी शुरुआत करने की घोषणा है, और साथ ही सरकार

0: जो अलग दूसरे देशों से आने वाले नागरिक हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने की जो घोषणाएं की हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं और जो भी तमाम प्रयास हैं, उनसे कैसे आने वाले समय में और भी ये मेडिकल टूरिज्म का एक पूरा ढांचा है और मजबूत हो रहा है?
1: बाहर से जो पेशेंट आ रहा है वो इंडिया आ रहा है, तो उसको हमें एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि उसके लिए सुरक्षित, गुणवत्ता वाला, आसान भरा और सस्ता, ये एक मैसेज देने की सरकार कोशिश की, और सरकार सक्सेस भी रही, सफल भी हुई है इसमें। जो बजट में जिस तरीके की उन्होंने घोषणाएं की हैं, इससे बहुत फायदा भी मिला है। इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 40% इंक्रीज हुआ है इनका चिकित्सा पर्यटन का जो डेटा है, और मतलब 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है बाहर से आने वाले मरीजों के संख्या में। तो जब सहूलियत होती है तो हर बंदा उसको अप्रोच को स्वीकार करता है। सरकार भी उसी दिशा में जा रही है और बहुत अच्छी दिशा है ये। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी, मतलब 2030 तो मैं बहुत ज्यादा आगे बता रहा हूँ, ये 2027-28 तक ही आप देखिएगा कि हमारा जो डाटा होगा, हमारे पास जो पेशेंट की संख्या होगी, हमारे पास जो सुविधाएं होंगी, उनमें बहुत तेजी से बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि अलग अलग कंट्री में अपने सेंटर भी खोले हैं, चाहे वो सरकार के जरिए हो या प्राइवेट हॉस्पिटल खुद डायरेक्ट वहां सेंटर खोल रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि हम आपके घर पहुंच गए, वहां वो अप्रोच कर रहे हैं, वहां वो बता रहे हैं देखिए आप भारत आइए तो ये तरीके का आपको इलाज मिलेगा, इतना सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में अमेरिका या बाकी कंट्री का तुलना करेंगे तो भारत में इलाज वाकई सस्ता है। डॉलर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो भारत का इलाज बहुत सस्ता है। आज भी भारत में 3 से 4 लाख रुपए में हार्ट की सर्जरी हो रही है, जो कि अमेरिका में उसी हार्ट की सर्जरी का मुझे अच्छे से याद है कि इसके लिए 12 से 15 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन पेशेंट के लिए भारत सबसे सस्ता और किफायती है।
0: और इसका एक आर्थिक पक्ष भी अगर हम परीक्षित जी देखें, तो जब एक पर्यटक आता है तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो ऐसे ही अगर मेडिकल टूरिज्म
1: बिल्कुल
0: भारत में बढ़ता है तो उससे निश्चित तौर पर भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। और पर्यटन मंत्रालय का आंकड़ा भी है 2024 का कि मेडिकल टूरिज्म की भारत में जो जीडीपी में योगदान है वो 5% से ज्यादा रहा है। तो कैसे आगे आने वाले समय में आर्थिक तौर पर भी भारत का बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म फायदा पहुंचाएगा?
1: देखिए, इस आंकड़े को अगर सजीव तरीके से देखना है तो खास तौर पे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं आपको गुड़गांव का बता सकता हूँ, दिल्ली का बता सकता हूँ कि गुड़गांव में अगर मेदांता अस्पताल है तो उसके आसपास जब
0: जी
1: भी आप जाएंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कई तरीके के पीजी, कई तरीके के जो है रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: किराए पे दिए
0: बिल्कुल
1: जा रहे हैं, कई तरीके के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, और वहां पे इंटरनेशनल पेशेंट रहते हैं और
0: रहते
1: बाकायदा सेफली हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं। प्लस वहां जो आसपास के जो दुकानदार हैं, उनका खाना पीना, वो सारी चीजें जो वो लोग आते जाते हैं, ऑटो वगैरह, तो मतलब कुल मिला के अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो जीडीपी को बहुत तेजी से फायदा हो रहा है।
0: इसीलिए सरकार ने हील इन इंडिया नाम से भी पूरा मिशन चलाया हुआ है कि भारत ग्लोबल हीलिंग हब बने, यानी लोग यहाँ आकर न सिर्फ अपना इलाज करवाएं बल्कि अपने शरीर को तरोताजा करके मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ करके
1: बिल्कुल
0: लौटें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमने इस चर्चा में बात की भारत के बढ़ते मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की, तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले समय में जिस गति से हम सरकारी योजनाओं और सरकार के समर्थन से भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसमें और आगे आने वाले समय में एक बहुत सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। और अभी जैसा कि हमने कार्यक्रम में चर्चा भी की कि भारत 10वें पायदान पर आता है मेडिकल टूरिज्म में, जो आगे आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म के पायदान में और ऊपर आएगा और भारत इस दिशा में और अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, बहुत सारी जरूरी जानकारियां भी साझा की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: मंथन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल

0: की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा है कि चाहे वे इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीगे के नव निर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपये का अनुबंध किया। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद रोमानिया की सरकार गिरी और भारत का आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में ईरान के संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद युद्ध विराम के बीच आज फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अमरीकी नौसेना हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अभियान को आगे बढ़ा रही है। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायु रक्षा प्रणालियां लगातार दूसरे दिन भी सक्रिय रहीं। हमले में किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ईरान के संयुक्त अरब अमीरात पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी कड़ी निंदा की है। खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मिस्र ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जॉर्डन और खाड़ी सहयोग परिषद और अरब लीग ने भी इसे संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी औपचारिक रूप से हमलों की निंदा की है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका ईरान युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है। श्री हेक्सेथ ने वॉशिंगटन में संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका खाड़ी में संघर्ष नहीं चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि वाणिज्यिक जहाजों या उनकी सेना पर ईरान के किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने कैरेबियाई सागर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक और संदिग्ध नौका को निशाना बनाया है, जिसमें 2 लोग मारे गए। अमरीकी प्रशासन ने पिछले वर्ष सितंबर में अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत लातिन अमरीकी जलमार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी वाले संदिग्ध जहाजों को निशाना बनाया गया। इसमें अब तक 188 लोग मारे जा चुके हैं। रूस के यूक्रेन के गैस उत्पादन संयंत्रों पर आज मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरगई कोरत्सकी ने बताया कि रूस की सेना ने पोल्टावा और खार्कीव क्षेत्रों में स्थित गैस उत्पादन संयंत्रों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 3 कर्मचारी और 2 आपातकालीन सेवाकर्मी मारे गए, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की

0: निंदा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के नेतृत्व वाली सरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गई, जिससे देश में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। पिछले महीने वित्त कटौती के कारण सोशल डेमोक्रेट्स गठबंधन से अलग हो गए थे। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 464 सीटों वाली संसद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 281 मत प्राप्त हुए। नेशनल लिबरल पार्टी के सदस्य बोलोजान ने जून 2025 में पदभार संभाला था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व की पुष्टि की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये यात्रा भारत और वियतनाम के बीच बहुआयामी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करेगी। श्री तो लाम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार ये खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच अमरीका ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद रोमानिया की सरकार गिरी और भारत का ICC पुरुष T20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

0: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1,130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
0: 5,660 crore rupees.
2: This project is worth 5,660 crore rupees and consists

மறை

பிரபலமான சடுகுடு விளையாட்டு.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

0: इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity Kapas Kranti with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor turned politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam TVK has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. The newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை காதலர் தினம், பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டோம். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
2: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है।

0: SPL का, सुची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with the semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in Supreme Court by 4 from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinagar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है।

0: भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIS से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam TVK has emerged as the single largest party in

0: ஒழித்த பாடலோட நிறைவு பெற்றது நினைஞ்சும் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी है।
2: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में

0: धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,000,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। वहीं अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत और अमरीका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बहुत करीब हैं। उन्होंने बताया इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंचा। ये यात्रा 9 मई तक चलेगी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता शामिल है। मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि अपने यात्रा के दौरान ये नेता ताइवान की सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंग गनबा मेईती पारशांत मोहम्मद ने अपने बेहतरीन जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi on a 3-day visit to India yesterday. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fiber to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी।
2: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम TVK के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि

वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और नई तकनीकों के कारण हालात जटिल हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,00,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंगनबा मेईती, पारशांत मोहम्मद यासिर और निवेश पाल ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। रणवीर को वॉक ओवर से जीत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश

2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।